0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: Retro Magic और Dance Floor Energy के साथ सुनो चुनरी चुनरी Let's Go.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बात बताओ, क्या कल भागम भाग फिल्म देखी थी?
2: मिर्ची अंशु
1: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से खूबसूरत से दिन की शुरुआत जो है ना हमारी जिंदगी में हो ही चली है। लेकिन सच कहूं यार, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना बहुत फास्ट भाग रही है। अगर वक्त के सिनोनिम को कुछ देखने की कोशिश करूँ तो उसका मतलब है स्पीड। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले हमारी निगाहें अगर किसी चीज़ में जाती है तो वो है हमारा फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, डेडलाइंस, ट्रैफिक, मीटिंग्स, कितनी सारी बातें ना। एंड फिर रात होते ही लगता है कि यार पूरा दिन कहाँ क्या पता ही नहीं चला। और शायद इसी भाग दौड़ के बीच, इसी भागम भाग के बीच हम लाइफ की छोटी छोटी ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है ना उन्हें मिस कर देते हैं। वो सुबह की हवा, आपके बच्चे की मुस्कान, घर की आवाज़, चाय की वो पहली सिप या खुद के साथ ही बिताए हुए वो 2 मिनट। तो यार आज ना एक काम करते हैं, लेट अस स्लो डाउन अ लिटिल। आफ्टर ऑल लाइफ कोई रेस तो नहीं। और इसी पे मैंने कुछ तो लिखा है, सुनाती हूँ। जिंदगी को थोड़ा आसान तो होने दो, सुबह को जरा आराम से होने दो, हर पल में यो भागना जरूरी तो नहीं, कुछ लम्हों को बस मुस्कुराकर जीने दो। तो बस इसी मुस्कान के साथ करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत। एंड अगर आपको लगी ये बात अच्छी लगी तो मुझे जल्दी से गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज दें, 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ रहे हैं ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: कॉल सेंटर
6: सर, इतना गुस्सा मत होइए सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
3: पिटोगे,
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
9: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
10: दोनों मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6
13: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: दिल। तो बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है. डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं जो शाम को समंदर के पास बैठ कर बस हवा को फील करना चाहते हैं. वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं. देखो यार, ऑयल एंड स्काईस्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी. डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है. सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है. भाई, समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं. शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती. वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली. हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. मंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: यार सच कह रही हूँ, अपनी फोन की बैटरी को ना इस वक्त तगड़ा कंपटीशन देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station and this is RJ Anshu with you. मैं तो बस उन्हीं फोन्स की बात कर रही थी जो अक्सर कंप्लेन दिया करते हैं कि हाय इनकी बैटरी जो है बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आपकी जिंदगी में है, जरा 10 मिनट या 5 मिनट बाहर खड़े होकर देखो अपने फोन से पहले ड्रेन जो है ना आप दोगे। अरे नाना इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, सूरज चाचू को जाता है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी आपका नाम भी जानते हैं, आपका काम तो बहुत अच्छी तरह से देख ही रहे हैं। Having said that, अगर आज के टेम्परेचर को मैं देखने की कोशिश करूं, so it is going to be around 44, minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एसी के रिमोट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, सनस्क्रीन को भी, लेकिन हाँ जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ शामिल हो अंशु के अलावा तो वो है पानी। मैं पानी पानी पीती रहूं और आप भी पीते रहें। Stay tuned to Mirchi. बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Hum bhi wo hain jo kabhi kisi ke peeche nahi khade hote. Jahan khade ho jate hain, line wahin se shuru hoti hai.
0: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चले कल से मुलाकात जरा आज ही कर लें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Aanchu with you. Well, अगर आपको भी लगता है कि कतर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर बिल्ड भी कर रहा है तो बस एक ऐसा इवेंट जो इस बात में अपनी मोहर लगाने वाला है उसका नाम है प्रोजेक्ट कतर 2026. Absolutely, प्रोजेक्ट कतर 2026 is back and guess what? This is the 22nd edition and this is going to be one of the biggest and most prestigious construction and infrastructure exhibitions in the region. 9th of June से लेकर 11th of June तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में दुनिया भर के इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स एंड साथ ही इंडस्ट्री लीडर्स एक ही रूफ में आपको नजर आएंगे. एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार का एडिशन सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, ये वो जगह है जहां आप अपने फ्यूचर को शेप होते हुए देख सकते हैं विद स्मार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग आइडियाज, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मोर. एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार के अगर फोकस को देखने की कोशिश करें तो ये पूरी तरह से इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कतर्स पाथ टू 2030. मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स की बात हो नहीं रही है बल्कि ऐसे आइडियाज की बात हो रही है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेटर और स्मार्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए फ्यूचर से जाकर मुलाकात आज ही कर लेते हैं. स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: खट खट
3: बूदेन
2: अगर कर
3: अगर कर हूँ
2: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
3: खट खट बूदेन
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Mirchi.
4: It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al-Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al-Goot Insurance. Visit Al-Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: हाइजीन पार्टनर हाइजीन, फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ। एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश। हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन।
3: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections. और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry. Design for generation.

0: बॉस, जब तुमको एडजस्ट करने में इतना वक्त लगता है तो ये तो फिर भी तुम्हारा शरीर है।
1: मिर्ची अंशु
0: इस वक्त अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें तो हमारा पक्का वाला दोस्त अगर कोई है तो वो है एयर कंडीशनर। हाँ जी, इसके बिना जो है हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। घर, ऑफिस, गाड़ी, हर जगह में सबसे पहले अगर कुछ चाहिए भाई एसी लगा। लेकिन इतना बता दूं, समटाइम्स एक्सेसिव एसी एक्सपोजर कैन एक्चुअली मेक यू फील मोर टायर्ड एंड डल ड्यूरिंग समर्स। स्ट्रेन साउंड कर रही हूं लेकिन ये सच है। देखिए होता क्या है, जब आपकी बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली मूव करती है ना एक्सट्रीम आउटडोर हीट एंड फ्रीजिंग इंडोर एसी के बीच में, तो आपके सिस्टम को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, कंफ्यूज होता है, जिसके कारण फटीग होता है, ड्राई थ्रोट, हेडेक्स, बहुत सारी चीजें यार। एंड गर्मियों में ना ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि बाहर जो है ओवन वाली फीलिंग है एंड घर के अंदर आइसलैंड वाली फीलिंग है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एसी के टेम्परेचर को बहुत कम कभी भी नहीं रखना। आइडियल कम्फर्ट जोन यूजुअली अराउंड 23 to 24 degrees Celsius। एंड इसके साथ ही डायरेक्टली फ्रीजिंग एसी एयर फ्लो के सामने कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अब ये थोड़ा सा सीक्रेट है जो मैंने आपके बीच पेश कर दिया, और एसी का रिमोट जो है कितने थप्पड़ खा रहा है इन दिनों ये आप मुझे बता दो। नहीं, हमने सुना है ना कि जब भी रिमोट काम ना करेगा थप्पड़ लगाओ तो काम करने लग जाता है। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम @mirchi1katariamirchianshu, मीनवाइल स्टडियो टू मिर्ची बदिगाराम अंशु।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
2: मोबाइल पे
1: और क्या,
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
4: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
7: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मेरे जहन में तो बस एक ही सवाल आता है कि बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस को होस्ट करने के लिए सेपरेट गैदरिंग की क्या जरूरत है, इस गाने की शूटिंग में ही कर लेते।
2: मिर्ची अंशु
1: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आर्य अंशु विद यू। अगर बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की मैं बात करूं जो जेन्युइनली हिंदी सिनेमा का सेलिब्रेशन है तो मेरे जहन में आता है ओम शांति ओम, यानी कि ओम और शांति की कहानी, डायरेक्टेड बाय फराह खान। लेकिन इस फिल्म के सबसे क्रेजी पार्ट को अगर आप जूम इन करने की कोशिश करें तो वो था इस गाने का शूट। यार किसी एक गाने में जब 31 बॉलीवुड स्टार्स एक साथ स्क्रीन पे नजर आए भाई, तो आप इसे लाइव म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड ना कहें तो फिर क्या ही कहें। डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट एरास, डिफरेंट सुपरस्टार्स, लेकिन सब ने फराह खान के लिए एक बार शूट के लिए हाँ किया। हर किसी की टाइमिंग अलग थी, हर किसी का स्केड्यूल अलग था, एंड फराह खान का कहना है कि जितना चैलेंजिंग इस गाने को शूट करना था उतना तो पूरी की पूरी फिल्म को बनाना भी नहीं था। लेकिन इवेंचुअली कहते हैं ना, या मुश्किलों के बाद जो सफर और जिस मुकाम पर हम पहुंच हैं उसकी खूबसूरती अलग ही होती है, और ये गाना जो है इस बात का लाइव टेस्टमेंट है। हैविंग सेड दैट, किसी अवार्ड फंक्शन को होस्ट करने के लिए ये गाना परफेक्ट मौका था। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
1: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, दिस इज आजे अंशु विथ यू। या लाइफ में ना कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं जब सब कुछ स्लो लगने लगता है, प्लान्स डिले होते हैं, आंसर्स

0: नहीं मिलते और लगता है यार ये सब कुछ कब बदलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, एक तोहफा है, शायद इसीलिए आज को प्रेजेंट कहते हैं। एंड कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, ना ही आपका दर्द, ना ही खुशी, और कभी कभी एक अच्छी सी कॉल, वो एक खूबसूरत सी सुबह सारे अंधेरे को बस दूर कर ही देती है एंड उसके साथ सब कुछ बदलता है। तो अगर आपको लगे कि इस वक्त आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो बस उम्मीद मत छोड़ना, और एक बात जरूर याद रखना कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह रोशनी जरूर लाती है, और हालात चाहे जैसे भी हो जाए मगर उम्मीद जरूर मुस्कुराती है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: હોલીવુડ બોલીવુડ બોલ્ડા
1: ઓન્લી ઓન મિર્ચી ઇટ્સ હોટ.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है. और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे.
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है.
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है. आप सुन रहे मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: मेरी जिंदगी में तो वेकेशन मोड कहीं ना कहीं ऑन हो चुका है। आपके क्या हाल है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, June का महीना आते ही ना कहीं ना कहीं एक अलग फीलिंग हमारी जिंदगी में आने ही लगती है. नहीं, वैसे देखा जाए तो ये कैलेंडर में सिर्फ शायद एक नया महीना हो, लेकिन हर एक पेरेंट कतर में रहने वाला ये जरूर जानता है कि हमारी जिंदगी में इस वक्त अगर कोई सिलसिला शुरू होता है तो वो है काउंट डाउन का, एंड दैट टू ऑफ समर वेकेशंस. क्योंकि बात इतनी है, बच्चों की छुट्टियों का ऐलान जो है बहुत जल्द होने वाला है, एंड इन दिनों जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हमारी छुट्टियां होती हैं. ना ना, पहले छुट्टियों पे ना हमारा एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन एक बार जो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो बस छुट्टियां जो है उनकी हो गई. अब आप जो है वेकेशन प्लान नहीं करते, वेकेशंस जो है आपको प्लान किया करते हैं. तो वेल, जून इकलौता ऐसा महीना बचा है जो पढ़ाई लिखाई जो है इस सीजन के लिए जोर शोर से होने वाली है, और इसके बाद अगर जिंदगी में कुछ आएंगे तो वो है समर वेकेशंस. जितना मुझे पता है 2nd of July इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफिशियल स्कूल डे फॉर योर किड्स. तो बढ़िया है, वेकेशन प्लान करना शुरू कर दें. और एक बात तो बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप इन बार छुट्टियों में अपने घर जाएंगे तो घर की मिठाई जो है अंशु के लिए जरूर लेकर आएं. स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: चले कल से मुलाकात जरा आज ही कर ले।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, अगर आपको भी लगता है कि कतर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर बिल्ड भी कर रहा है, तो बस एक ऐसा इवेंट जो इस बात में अपनी मोहर लगाने वाला है उसका नाम है प्रोजेक्ट कतर 2026। एब्सोल्युटली प्रोजेक्ट कतर 2026 इज बैक एंड गेस व्हाट, दिस इज द 22nd एडिशन एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशंस इन द रीजन। 9th June से लेकर 11th June तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में दुनिया भर के इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स एंड साथ ही इंडस्ट्री लीडर्स एक ही रूफ में आपको नजर आएंगे। एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार का एडिशन सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, ये वो जगह है जहां आप अपने फ्यूचर को शेप होते हुए देख सकते हैं विद स्मार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग आइडियाज, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मोर। एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार के अगर फोकस को देखने की कोशिश करें तो पूरी तरह से इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कतर्स पाथ टू 2030। मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स की बात हो नहीं रही है बल्कि ऐसे आइडियाज की बात हो रही है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेटर और स्मार्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलिए फ्यूचर से जाकर मुलाकात आज ही कर लेते हैं। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
3: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana, rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Milci, burka.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
5: उससे भी ज्यादा।
4: लॉटरी लग गई?
5: उससे भी बड़ा।
4: तो फिर बताओ।
5: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
3: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
3: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो एक ही बात कहना चाहूंगी, सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बाद में बनाना, उसके पहले जरा इसे तो बना लो।
1: मिर्ची अंशु
0: कतर की गर्मियों की बात करें और इसे बेस्ट फ्रेंड ना बनाए तो फिर किसे ही बनाए? अरे इन्हें आपने पहचाना नहीं, बस यही
2: मैं पानी पानी हो गई।
0: हाँ जी, कतर की गर्मी एंड पानी की वो ग्लास उस वक्त आपकी जिंदगी में ना आपके बेस्टेस्ट बड़ी होने चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेटेड पहले होती है और प्यास जो है आपको बाद में लगती है। बस उसी तरह जिस तरह से आपकी बीवी गुस्सा पहले होती है, रिएक्ट बाद में करती है। तो इससे पहले की बीवी रिएक्ट करे उसके मन की बात समझ लो और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो उसके पहले पानी जो है वो पी लो। लेकिन कई बार ये होता है, हमें लगता है कि भाई हम तो बाहर गए नहीं, अंदर ही अंदर बैठे थे, उसके बाद भी हमें थकान क्यों लग रही है, यू नो हम जो है लेथार्जिक क्यों फील कर रहे हैं। भाई सब इतना समझाएं, एसी में बैठे बैठे भी आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट होती है। इनफैक्ट कई बार ये होता है, हमें लगता है लैक ऑफ स्लीप जो है बहुत सारी इश्यूज का जड़ है, लेकिन ना पानी की कमी भी बहुत बड़ा जड़ जो है ना वो हो ही सकती है। तो बस खुद को हाइड्रेटेड रखें, अच्छी तरह से रखें। एंड एक और टिप दे रही हूं, अगर आपको लगे कि डिहाइड्रेशन जरा सा भी महसूस हो रहा है तो पानी में जरा नींबू का रस हो, हल्का सा नमक हो, हल्का सा शक्कर, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, इसे जरूर ऐड करें। इनफैक्ट कोकोनट वाटर कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग समर्स। तो ये थी आज की हेल्थ टिप। मुझे थैंक यू बोले, आपकी जिंदगी में आपकी सेहत को अच्छा करने का काम क्यों, खुशी तो मैं लाती रहती हूँ। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Am răsile, iar am răsile.
1: Mărcianșu, mărcianșu, mărcianșu, mărcianșu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, Qatar mein summers jo hai wo full on aa chuke hain aur aapne ab agar Souq Waqif ke mango festival ka wait na kiya to phir kya hi kiya. Are bas wahi festival jahan aam sirf khaye nahi jaate balki puri tarah se celebrate kiye jaate hain. Indian mangoes, Pakistani mangoes, yaar har variety ka apna ek alag fan base hai. Kahin wo Ratnagiri Alfonso ka craze to kahin Chausa ki wo sweetness, kahin Langda ka taste and bhai wo ghar wala aam ka achar. Yahan pe na hame zarur mil jata hai. Sach kahun uski khushboo आते ही ना मैं ऑफिशियली अपने बचपन मोड में चली जाती हूँ. लेकिन चलिए इस वक्त ना अगर मैं इंडियन मैंगोज की बात करूँ तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. इंडिया ग्रोज नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगोज. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दुनिया भर का आधा आम जो है ना इंडिया में ही होता है. एंड मैंगोज आर ग्रोन अक्रॉस ऑलमोस्ट 2.2 to 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया. इसके साथ ही ये भारत का लार्जेस्ट फ्रूट क्रॉप है. लेकिन बात इतनी है कि जितने मैंगोज प्रोड्यूस किए जाते हैं ना भारत सिर्फ उसका 1% ही एक्सपोर्ट करता है. मतलब हम खुद ही इतने आम खा जाते हैं कि दुनिया क्या ही पहुंचाएंगे. बढ़िया है जी. लेकिन जितने आम कतर में आते हैं हम जो है ना बड़े खुश हैं. इनफैक्ट कतर एक ऐसी जगह है भाई जहां पे आपको 12 महीने आम खाने को मिलता है. बहुत अच्छी तरह से आप ये बात जानते हैं. तो हम तो अपने घर वालों को यही कहते हैं, भैया तुम तो साल के 3-4 महीने खाते होगे, हम तो 12 के 12 महीने कमाल दुनिया भर के आम खाते. क्या कहती पब्लिक. वेल, जैसे ही डेट्स आएंगी सुक वाकिफ मैंगो फेस्टिवल की मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी. अगर आप घर पे आम का अचार बनाए तो प्लीज मुझ तक पहुंचा देना. 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश, तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: हाइजीन पार्टनर हाइजीन, फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ। एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश। हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन।
3: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
0: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद। इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: यार सुनो ना, कुछ करो ना करो, लेकिन इस एक बात को जरूर नॉर्मलाइज कर दो।
2: मिर्ची अंशु
1: Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार ह्यूमन माइंड जो है ना बड़ा कमाल है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो जिंदगी नामक जंग है ना, हर दिन हमें इसमें फतेह हासिल करनी है। लेकिन एक एथलीट से, एक प्लेयर से मैंने यही सीखा है दैट नॉट एवरी सिंगल डे कैन बी अल्ट्रा प्रोडक्टिव एंड सम डेज आर मेंट फॉर विनिंग एंड सम डेज आर सिंपली मेंट फॉर ब्रीदिंग। जरूरी नहीं यार ये जिंदगी का हर दिन जो है ना एकदम उस सिल्वर स्क्रीन की तरह हो जहाँ पे सब कुछ ल्यूक्रेटिव, सब कुछ मैजिकल नजर आता है। भाई हो सकता है आज तुम थोड़े उदास हो सकता है आज थोड़े थके हुए हो सकता है आज चीजें वैसी नहीं हुई जैसे तुमने सोचा था, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कल का जब सवेरा आएगा ना तो सब कुछ बहुत ज्यादा रोशन करके आएगा और इस बात को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी जीत है। वो कहते हैं ना, हर दिन बेहतरीन हो ये जरूरी तो नहीं, हर चेहरे पे मुस्कान हो ये जरूरी तो नहीं, कभी खुद को थोड़ा वक्त देकर भी देखो, हर दिन एक जंग हो ये जरूरी तो नहीं। चलिए जी, इसी थॉट के साथ अभी कहती हूँ अलविदा। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: कौन है?
5: स्टेन.
4: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
4: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेज में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशन.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ओ माय गॉड, क्या गाना है ये माशुका भाई, मैं तो पागल हो गई उस गाने को सुनते सुनते। इसको गाया है महमूद, राघव और रुआ ने। भाई क्या गाना है। इस गाने के साथ ही कॉकटेल 2 भी बस हाल फिलहाल में होने वाली है रिलीज जल्द ही, लेकिन उसके अलावा मैं आ चुकी हूँ मिर्ची ईशा आपको सुनाने इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है, क्या होगा, कहाँ जा सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो विद मी। बस उसके लिए क्या करना है, बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Na vidu pala murga. Milchi, murga.
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: गर्लफ्रेंड
3: से ज्यादा करते हैं। सर, किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह की जो आवाज अभी है वो पहले नहीं थी? क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे ही वो जब इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट की तरह थे तो उनकी आवाज उस मुकाम तक नहीं जा पा रही थी और उनको उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिल रही थी, गाने इतने अच्छे और पसंद भी नहीं आ रहे थे हमारे जजेस को, तो उन्होंने उस पे वर्क किया और अपनी आवाज को तोड़ा। दैट मींस जो इंडियन आइडल में उनकी आवाज थी और अगर आप उस आवाज को सुनते हैं और आज की आवाज को सुनते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। और उनका कहना था कि मैंने अपनी आवाज को तोड़ के एक नई आवाज क्रिएट की जो अब लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इससे मुझे एक चीज या एक लेसन तो जरूर मिलता है कि इंसान जब अपने आप का एक जो पुराना इंसान है उसको मारता है और एक नए इंसान में अपने आप को ढालता है तभी उसको वो पॉपुलैरिटी मिलती है। दैट मीन्स सैक्रिफाइस, अपनी पुरानी आवाज को सैक्रिफाइस करके एक नए इंसान में बदलना, नई आवाज में बदलना बहुत चैलेंजिंग तो रहा ही होगा एंड उसके अलावा बहुत गट्स चाहिए वो चीज करने के लिए, वो परफॉर्म करने के लिए। बाकी हैट्स ऑफ टू अरिजीत सिंह जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपनी वॉइस को त्याग के एक नई वॉइस क्रिएट की और जो सब लोगों में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। एंड फॉर मोर ऐसी मजेदार बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मैं चीशा कोहली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेमतलब बनी हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। इस जीवन में बेमतलब कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे आप अगर टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ नर्डल। यस। एंड अगर आप अल्फाबेट्स में देखें, आई और जे जब भी आप लिखते हैं, स्मॉल आई और जे, तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उस डॉट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ टाइटल। और एक और आपको बता दूं तो अगर आपने कॉफी पी होगी बहुत से कॉफी आउटलेट्स पे, तो वहां पे आपको एक कप दिया जाता है, उसको एक कार्डबोर्ड के कवर के साथ, ब्राउन कवर के साथ कवर किया जाता है, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अजार। अजार्फ, जी हाँ। ये एक स्ट्रेंज सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, बड़ी अजीबोगरीब थी। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची शीशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Dosti kai kusul hai madam? No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
3: To mirchi suno na, jahan entertainment khoob milega.
4: Khoob milega.
0: Qatar ka number one radio station.
5: 89.6
6: FM Mirchi 1. It's hot.

वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
3: Cut, cut.
4: Who that?
3: Jassi.
4: Jassi? Kaun si wali Jassi?
3: Jassi who has come, auntie ji?
4: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Good Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एसदानोएसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with Hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशन।

0: मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मिर्ची ईशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: रेट्रो मैजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ सुनो चुनरी चुनरी, लेट्स गो।

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पा रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब, मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हों और बहुत मजेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है, एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा, एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM to 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM to 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM to 7 PM. तो जाना कहाँ है, 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा, अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & हॉट.

अगर आपको भी ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, नए पार्क्स को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वेलकम, आप सही जगह आए हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची ईशा को और शाम शानदार में आपकी शाम को और शानदार करने आ चुकी हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी हिडन प्लेस जो अभी हाल ही में खुली है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्क जो अल थुमामा में खुला है एंड इट इज अल नाफल पार्क, जहाँ पे आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिली के साथ, बच्चों के स्कूटर्स उठा के, साइकिल्स उठा के आप निकल जाइए अल थुमामा में, अल नाफल पार्क में जो नया ही नया खुला है एंड इट इज अ फैमिली फ्रेंडली पार्क, जहाँ पे आपको मिलेगा आउटडोर एरियाज जहाँ पे फिटनेस भी है एंड वॉकिंग एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, जॉगिंग एरियाज है एंड उसके अलावा आपको शेडेड ग्रीन स्पेसेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। उसके अलावा किड्स प्ले एरिया तो ऑब्वियसली हर पार्क में है कतर में, तो बस यहाँ पे भी तो हो। और आपने क्या करना है, बस अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उठा के जाना है, एंजॉय करना है, बाकी बस अपने आस पास को साफ भी रखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनको भी सिखाइए भी साफ रखना है, पार्क को गंद नहीं मचाना है। बाकी फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

अच्छा तो हम चलते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि फिर कब मिलोगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जी हाँ, फ्राइडे एंड सैटरडे मिलूंगी आपको इसी जगह इसी समय। और करना क्या है आपको, हमको फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हमारे, मिर्ची वन कतर को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेशन मिलती रहेगी हमारे इवेंट्स से रिलेटेड। कुछ भी हो रहा है कतर में, सब कुछ आपको पता लगेगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और उसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मिर्ची ईशा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज लेने के लिए बस आप सुनते रहिए हमें, यानी कि मिर्ची वान कदर को। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बाल माँ, सावन बीता जाए। होए।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: साहिबान मेहरबान कदरदान।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जरा गौर फरमाइए मेरी जान, क्योंकि माया नगरी मुंबई के लिए एक मेजर अपडेट आया है। बेसिकली द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फाइनली मुंबई में भी आ चुका है, ब्रिंगिंग इट्स रिनाउंड एक्टिंग ट्रेनिंग लेगेसी टू इंडियाज एंटरटेनमेंट कैपिटल। और इसी के साथ अब जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड अल्टरनेटिव मिलेगा टू प्राइवेट एक्टिंग स्कूल्स। बाकी इस डेवलपमेंट के ऊपर इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर्स लाइक परेश रावल, पंकज त्रिपाठी, राज बब्बर सर, इन सब ने इस बात को अप्रूव करते हुए कहा है कि दिस एक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म थिएटर एंड स्क्रीन ट्रेनिंग इन द सिटी, जिसके साथ ही स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री पाथवेज खुलेंगे लोगों के लिए एंड फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ परफॉर्मर्स। वैसे ऑनेस्टली यार, एनएसडी की जो लेगेसी रही है एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इट हैज गिवन टू द इंडस्ट्री इज एक्चुअली रिमार्केबल एंड समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शबीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख खराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानूं, उसे बनवाया था, उससे पूछे भाई।
2: उसने कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। लाहौर 1947 नहीं, अब इस मूवी का नाम होगा बंटवारा 1947। हां जी, सनी देओल एंड प्रीति जिंटा स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म की बात कर रही हूं, जिसमें इन दोनों के अलावा शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह और अली फजल भी लीड रोल्स में नजर आएंगे। राजकुमारी संतोषी डायरेक्टोरियल इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, एंड माइंड यू फिल्म का जो नरेशन है वो आमिर खान की आवाज में ही होने वाला है। वैसे अनदर अपडेट है इसकी, फिल्म का टीजर 15th ऑफ जून को रिलीज होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा विलेन के रूप में, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अगर ये बात सच है तो। और ये होने वाला है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फॉर दिस अपकमिंग फिल्म रेस 4। हाँ जी, रेस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म आने वाली है, एंड माइंड यू मेकर्स ने डिसाइड किया है कि भाई हम भूल जाएंगे कि रेस 3 आई थी कभी, क्योंकि ये रेस 4 की कहानी जो है वो रेस 2 जहां खत्म हुई थी वहां से शुरू होगी। अब ऐसे में मुझे लग रहा है कि भाईजान के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि आऊं मैं अपने पे, आऊं मैं अपने पे, है जवानी तो इश्क होना है। भाई मैं ऑनेस्टली इस फिल्म के लिए उतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इट इज वर्किंग ऑन, बट इस मूवी ने एडवांस बुकिंग्स में 8,000 से ज्यादा टिकट्स बेच ली हैं, सो ऑल इन ऑल 7 से 8 करोड़ की ओपनिंग तो ऑन कार्ड्स है फॉर द फिल्म, विच डेफिनेटली इज बेटर देन पति पत्नी और वो दो, जो अभी कुछ टाइम पहले आयुष्मान खुराना वाली मूवी नहीं आई थी। बाकी माई 2 सेंट्स फॉर सच मूवीज आर कि भाई कॉमेडी के नाम पे हमें इनफिडेलिटी को इतना प्रमोट क्यों करना है। जस्ट सेइंग। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची फ्रेश माल,
1: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को करो साइडलाइन और मेरे साथ बॉलीवुड गेम में करो शाइन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड लाइक आई ऑलवेज से, हम हिंदुस्तानी जो है ना, उनके लिए एंटरटेनमेंट इज द कोर ऑफ आर लाइफस्टाइल। तो ऐसे में बॉलीवुड गेम खेलना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एंड देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति, वहां मेरे DMs में स्लाइड इन करके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए। आई विल गिव यू अ कॉल एंड वील गेट गोइंग विद द गेम। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी मैसेज कर रखा है, तो सबसे पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है वीरेश अग्रवाल जी। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम सर?
3: अभी लगी इजी प्लीज।
0: बिल्कुल बिल्कुल इजी होगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ये किस फिल्म का डायलॉग है?
3: शोले।
0: शोले के लंबे वाले हीरो का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन को किस फिल्म में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था?
3: डॉन।
0: ग्रेट। डॉन के रीमेक में लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की किस फिल्म में उनको फेटल डिजीज होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं?
3: कल होना
0: हो। Awesome! कल होना हो की लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की किस फिल्म में एलियन आता है?
3: जादू। अरे कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया की सीक्वल का नाम?
3: क्रिश।
0: क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, यहाँ अटक गए आप। बट कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला आपने, इसके लिए मैं आपको जरूर से बनाना चाहूंगी मिर्ची फिल्म ची।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो भाई आप अगर आगे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाइए और अपना नंबर मुझे भेजिए। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेष का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: खट खट
3: पूरे
2: बनता
3: बनता हूँ।
2: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
3: खट खट हूँ दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन।

0: क्या बनना चाहोगे मिर्ची फिल्म ची?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: तो हर रोज की बात है, आज भी मैं ढूंढ रही हूँ एक ऐसा फिल्मची जो मेरे साथ खेलेगा एक बॉलीवुड गेम और फिर उसको मिलेगा ये टैग इफ एट ऑल ही और शी प्लेज द गेम वेल। सो ऑलरेडी इस गेम का एक राउंड हो चुका है जिसमें विरेश अग्रवाल गॉट स्टक एट अ पॉइंट जहां पे उन्होंने जवाब नहीं दिया ऑफ द क्वेश्चन कि भाई क्रिश मूवी में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है। तो इसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ हैं राजीव शर्मा। तो सर आपको इसका जवाब पता है?
3: ऋतिक रोशन किसका ही?
0: ऋतिक रोशन की मूवी जिसमें वो चोर बनते हैं
3: धूम टू।
0: धूम टू में लंबे वाले पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है?
3: लंबे वाले पुलिस ऑफिसर का नाम तो वो है अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की मूवी जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ नजर आई है?
3: रणबीर कपूर के साथ नजर आई है ए दिल है मुश्किल।
0: ए दिल है मुश्किल में किसको कैंसर हो जाता है?
3: जो होता है ये तो अनुष्का शर्मा को होता है।
0: अनुष्का शर्मा की मूवी जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है?
3: अरे ये तो रणवीर सिंह के साथ है ना
0: कौन
3: शादी मुबारक है वो
0: कौन सी
3: शादी मुबारक नाम है?
0: शादी मुबारक उसका नाम पहले होने वाला था लेकिन फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। बट कोई नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला है आपको भी मैं बनाना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: चलो यार जवाब मैं बता देती हूँ। सो अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है इज नन अदर देन बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात। वेल अपने इस गेम का सिलसिला कल फिर से जारी रखूंगी बट अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग राइटेड ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार सच कह रही हूँ, अपनी फोन की बैटरी को ना इस वक्त तगड़ा कंपटीशन देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station and this is RJ Anshu with you. मैं तो बस उन्हीं फोन्स की बात कर रही थी जो अक्सर कंप्लेन दिया करते हैं कि हाय इनकी बैटरी जो है बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम है तो उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आपकी जिंदगी में, जरा 10 मिनट या 5 मिनट बाहर खड़े होकर देखो अपने फोन से पहले ड्रेन जो है ना आप दोगे। अरे नाना इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, सूरज चाचू को जाता है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी आपका नाम भी जानते हैं, आपका काम तो बहुत अच्छी तरह से देख ही रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आज के टेम्परेचर को मैं देखने की कोशिश करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एसी के रिमोट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, सनस्क्रीन को भी। लेकिन हाँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ शामिल हो अंशु के अलावा तो वो है पानी। मैं पानी पानी पीती रहूं और आप भी पीते रहें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
3: मिर्ची, fresh माल.
5: Retro magic और dance floor energy के साथ सुनो चुनरी चुनरी, let's go.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6.
1: It's hot.

0: Energy.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vida a la burga.
2: Energy, burga.
3: हेलो
4: हाय, आप अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
3: हाँ।
4: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
5: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
5: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
5: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1st September 1980।
5: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
5: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
5: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
5: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
5: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
6: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले ही, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
6: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
3: पिटोगे,
6: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
9: उससे भी ज्यादा।
8: लॉटरी लग गई?
9: उससे भी बड़ा।
8: तो फिर बताओ।
9: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
10: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वक्रा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
11: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
12: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
11: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
13: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
11: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
14: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
15: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: एक्टिंग इतनी कमाल कि मेन लीड से ज्यादा फुटेज इनको मिला।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं जिसमें अलग अलग किरदार नजर आते हैं, कुछ मेन लीड्स होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पांच फिल्मों को डिस्कस करूंगी जिनके साइड कैरेक्टर्स ने हमारे दिल में मेन लीड से ज्यादा जगह बना ली अपने परफॉर्मेंस के दम पे। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर वन पे लेट्स टॉक अबाउट हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आपटे। भाई साहब, ये बाबूराव का स्टाइल है, उठा रे बाबा मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले, ये सारे डायलॉग्स आज भी हर दूसरे इंसान के दिमाग में फिट हैं और हम ऑन अ डेली बेसिस भी अपने सिचुएशंस में इन डायलॉग्स को यूज कर लेते हैं। एंड दैट माई फ्रेंड इज द पावर ऑफ दिस एक्टर, बोले तो परेश रावल, जिन्होंने इस फिल्म में कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को बहुत अल्टीमेट तरीके से दिखाया है। उनका अनफिल्टर्ड फ्रस्ट्रेशन हो, लेजेंडरी कॉमिक टाइमिंग हो, या फिर हर बार उनका रॉन्ग नंबर के चलते परेशान होकर सामने वाले को गालियां सुनाना हो, कसम से मेरे हिसाब से तो बाबूराव गणपतराव आपटे के ऊपर एक अलग फिल्म बननी चाहिए। मजे नहीं आएंगे उनकी बैक स्टोरी जानने में। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में ऐसे ही और चार कैरेक्टर्स की बातें वापस लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट. चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में. स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त.
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल. शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल. अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन.
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner, Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ. एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी. शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार. स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस.

0: कश्यप।
1: इनकी परफॉर्मेंस से मेन कैरेक्टर को भी सेल्फ डाउट हो जाता है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: बाबू मोशाय, मैं उन साइड कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके बिना एक फिल्म अधूरी है, और इनकी परफॉर्मेंसेस इस लेवल की रही हैं कि भैया ऑडियंस ने मेन कैरेक्टर को भी उतना प्यार ना दिया हो इन द फिल्म जितना इन साइड कैरेक्टर्स को मिल गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही पांच कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबू राव गणपत राव आपते को डिस्कस किया। अब नंबर दो पे फिल्म वेलकम से उदय शेट्टी और मजनू भाई को कैसे भूल सकते हैं यार। मतलब एक तो इन दोनों का परफेक्ट मिक्स, स्कैरी गैंगस्टर और फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट, और इनका जो ब्रोमांस है ना वो अलग लेवल, लेजेंडरी। वो नाना पाटेकर बोले तो उदय शेट्टी का कंट्रोल उदय कंट्रोल हो, या फिर हमारे मजनू भाई का घोड़े पे गधे वाली पेंटिंग हो। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया से छोटा पंडित की भाई साहब प्लेड बाय राजपाल यादव। ये कैरेक्टर जो है ना इसने अपना एक कल्ट बना रखा है। अब उनका पानी का नाम सुन के एकदम जोर से छलांग मारना हो या फिर अपने आप को पूरी तरीके से लाल रंग में रंग के कान पे अगरबत्ती लेके लोगों के बीच इधर उधर घूमना हो, इन शॉर्ट छोटे लाल का कैरेक्टर वॉज समथिंग जिसके बिना भूल भुलैया फ्रेंचाइजी इज इनकम्प्लीट। Well, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसे ही कैरेक्टर्स की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल तब तक आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स आपको भी पसंद आए हैं कभी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: साइड एक्टर्स में मेन कैरेक्टर एनर्जी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर फ्राइडे हमें कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलती है, और हर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स तो होते हैं लेकिन उनकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे साइड एक्टर्स की डिस्कशन कर रही हूँ जिन्होंने मेन लीड से ज्यादा स्पेस हमारे दिल में बना ली है। और लिस्ट में सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आप्टे की बात की। नंबर दो पे वेलकम के उदय शेट्टी एंड मंजनू भाई। नंबर तीन पे भूल भुलैया से छोटा पंडित। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई MBBS से सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिस तरीके से अरशद वारसी ने सर्किट के कैरेक्टर के जरिए एक सच्चा दोस्त अपने आप को प्रूव किया है ऑफ मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का किरदार ऑफ कोर्स इज रियली कमेंडेबल। एंड उनको देखने के बाद इन द मूवी हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि भाई अपने जीवन में भी एक सर्किट तो मांगता है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लास्टली बात करते हैं फिल्म ऑल द बेस्ट से RGV की, बोले तो रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकावले। ढोंढू जस्ट चिल, ये डायलॉग हर दूसरे इंसान के जुबान पे जरूर है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो हाई ऑन स्ट्रेस है लेकिन जिस तरीके से उनकी फिलॉसफी है ढोंढू जस्ट चिल, इट जस्ट रेजोनेट्स विद द एंटायर जनरेशन। तो बताइए मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स का नाम ऐड करना चाहेंगे? देन फील फ्री टू डू दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

शायरे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान, और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है। क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट। लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस। शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है, सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत। आई विल बी बैक।
4: नंबर 20।

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है, और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं, एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले, और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे, और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस, श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए? मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: है मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब?
3: आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अर्ज किया है
5: इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17 उसे

0: वेलकम टू द जंगल। और उस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये फिल्म कम लगती है और बॉलीवुड कॉमेडी एक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग ज्यादा। इतने लोग हैं इसमें कि अगर एक और एक्टर जुड़ गया ना तो अटेंडेंस रजिस्टर खोलना पड़ेगा। लेकिन मजाक एक तरफ, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे एक और ट्रेंड से रूबरू करवा दिया। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्म्स के सीक्वल्स नहीं बना रहा, बॉलीवुड यादों के सीक्वल्स बना रहा है। पहले फिल्म का सीक्वल आता था, लेकिन अब फिल्म के साथ उसमें जो गाने थे उनके भी सीक्वल आ रहे हैं। भूल भुलैया वापस आती है तो उसका टाइटल ट्रैक भी वापस आ जाता है। डॉन वापस सो उसकी थीम वापस, धूम वापस तो उसकी भी थीम वापस, एंड देन यू गॉट है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें टाइटल ट्रैक भी है, चुनरी चुनरी भी है। पहले नोस्टैल्जिया साइड डिश हुआ करती थी, अब नोस्टैल्जिया मेन कोर्स बन चुकी है। और शायद इसलिए जब कोई नया गाना अपनी खुद की पहचान बना लेता है तो वो और भी खास लगने लगता है, जैसे गाना नंबर 15 Once Again by विशाल मिश्रा।
1: नंबर 15

दीवानियत, एक ऐसा गाना जो किसी पुरानी याद को बोरो नहीं करता, अपनी याद बनाने की कोशिश करता है। और अब नंबर 14 पे एक गाना जो पहले इंटरनेट का था फिर बॉलीवुड का हो गया। दिस वन इज फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, हमने वही दिल लगाया बाय द मंडल ब्रदर्स। नंबर

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: हाइजीन पार्टनर हाइजीन, फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ। एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश। हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन।
1: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची 1।
7: It's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
8: Number 13.

0: जाइए सजना बाय द ऑसम चिक जैस्मिन सैंडलर्स और धुरंधर मेरे लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। ये एल्बम सिर्फ हिट नहीं हुई, ये नए सिंगर्स को भी स्पॉटलाइट में लेके आई। जैस्मिन सैंडलर्स को ही आप देख लीजिए, काफी सालों से वो गाने गा रही हैं, यार ना मिले, इलीगल वेपन, लेकिन कभी कभी एक गाना ही काफी होता है पूरा परसेप्शन बदलने के लिए। और फिर बॉलीवुड का म्यूजिक बिजनेस मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक तरफ नई आवाजों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ आवाजें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मेरा फोन जो है वो शफल मोड पे था और अचानक ये गाना चल पड़ा।
1: काले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जान।
0: Do you remember the song? It was from Murder 2. और सिंगर थे हर्षित सक्सेना, एक ऐसे सिंगर जिनका नाम सुनते ही आज भी ये गाना मुझे याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद Where did he go? Chartbusters की लिस्ट में वो नाम फिर कभी वैसे नजर ही नहीं आया। And then there is a name जो मुझे याद आया, which is the most shocking, अंकित तिवारी, मेरा दोस्त, एक सिंगर कंपोजर, इसने बैक टू बैक दो ऐसे गाने दिए जो पूरी जेनरेशन की प्लेलिस्ट को डिफाइन करते हैं।

यार सवाल ये नहीं है कि अंकित तिवारी कहाँ चले गए, सवाल ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाता है। कल जिस आवाज पर पूरा देश फिदा था, आज उसकी जगह कोई नई आवाज ले लेती है। लेकिन मेलेडी की एक खूबसूरत बात है, वो रिटायर नहीं होती, बस नए चेहरे ढूंढ लेती है। और इस वक्त उस नई आवाज का नाम है फहीम अब्दुल्ला। नंबर 12 पे इज इटर्नल हिट सैयारा का टाइटल ट्रैक। नंबर 12।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Cut, cut.
7: Who that?
6: Zaheer.
7: Zaheer. Zaheer who?
6: Zaheer si baat hai. Main hi hu. Aur koi nahi.
7: Cut, cut. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं, शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है, लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है, जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे वो लंबी ड्राइव, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना, और हाँ शायद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है। दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। And how Shahid can still look so convincing as a college boy, it totally baffles me. But he nails it. मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बस इतना पता है, मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा। And maybe that's the biggest compliment a song can get. Maybe this song will go to number one. लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का दो अलग दुनिया एक साथ. This is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

नंबर 9 पे था वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा ए आर रहमान। एक और रिमाइंडर कि प्यार सिर्फ शोर नहीं मचाता, इट डजंट हैव टू बी लाउड, कभी कभी वो धीरे से दिल में जगह बना लेता है, और शायद इसलिए कुछ फिल्म्स वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। ये जवानी है दीवानी, उसकी रिलीज को अब 13 साल हो गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लोग उसे एक फन समर एंटरटेनर समझ रहे थे, ग्लॉसी स्टार्स थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस, द धर्मा स्टाइल रोमांस। लेकिन आज समझ आता है कि फिल्म एक्चुअली थी किस बारे में, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, द अर्ज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, और वो कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन एम्बिशन एंड बिलोंगिंग। अयान मुखर्जी ने उस जेनरेशन की कंफ्यूजन को बॉलीवुड स्केल पे कैप्चर कर लिया, और फिर आता है उस फिल्म का म्यूजिक।

ये सिर्फ होली का गाना नहीं रहा। ये सिर्फ पार्टी ट्रैक नहीं रहा।

0: ये सिर्फ ट्रैवल सॉन्ग नहीं रहा, ये गाने लोगों की मेमोरीज बन गए। लेकिन अगर उस पूरी एल्बम में एक थीम थी, एक स्पिरिट था, एक सोल था, तो वो था कबीरा। वो गाना जो आप सेलिब्रेशन में नहीं सुनते, आप उसे तब सुनते हो जब जिंदगी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए। फिल्म में उसके दो वर्जन थे, लेकिन माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज द वन दैट इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दिस इज द रीप्राइज वर्जन ऑफ कबीरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
1: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया।
2: ओह माय गॉड।
1: अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1.
11: It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
12: Number 8.

0: व्याह करवा दो जी। एंड ऑनेस्टली है जवानी तो इश्क होना है, थिएटर्स में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस ने फिल्म को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना अपनाया है। लेकिन इस हफ्ते एक और फिल्म ने मेरा ध्यान खींच लिया, कॉकटेल 2, इसका ट्रेलर आ गया ऑन यूट्यूब। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द फिल्म और मैंने भी सोचा यार कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ जरा देख लूं, जानू तो सही शाहिद, रश्मिका और कृति आखिर अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, ट्रेलर हिंदी में, फिल्म हिंदी में, गाने हिंदी में, लेकिन स्टेज पर हुई बातचीत पूरी अंग्रेजी में। और ये बात सिर्फ कॉकटेल 2 की नहीं है, आजकल किसी भी बड़ी फिल्म लॉन्च को देख लीजिए, कभी कभी लगता है फिल्म का प्रमोशन कम और एमबीए में वाइवा ज्यादा चल रहा है। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाली डिबेट नहीं है बॉस, वो बोरिंग है। ऑडियंस इंग्लिश समझती है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, चाहे कानपुर में बैठी हो, चाहे मुंबई में बैठी हो, चाहे इंदौर में बैठी हो। इशू भाषा का नहीं है, इशू कनेक्शन का है, क्योंकि सिनेमा तब बनता है जब आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनकी भाषा बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक भाषा में बात करता है और सपने दूसरी भाषा में बेचता है। ऑडियंस अब टाइटल्स पढ़ लेगी, एक्सेंट भी समझ लेगी, इंग्लिश भी समझ लेगी, बस एक चीज है जो ऑडियंस के साथ नहीं चलती, एंड दैट इज फेकनेस। हमें चाहिए कनेक्शन। लेकिन इस फिल्म के एक गाने का जबरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है, आई हैव बीन हियरिंग इट ऑन लूप, मेरे दिमाग से ये गाना नहीं निकला है। इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक, माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, 4 पोजीशंस ऊपर, सर्टिफाइड बैंगर बाय प्रीतंदा, क्रिटिक्स गए तेल लेने।
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकन गे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हेवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड कि बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे, जन

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Whom are you?
6: Whom are you who?
5: Are whom are you looking for, madam?
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi.
7: It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 3.

वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ? करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन stylish international crime thriller, criminal mastermind, ऐसा anti-hero जिसके लिए आप secretly root करने लगते हो, there is none, zero, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए Dawn important है, क्योंकि जब Bollywood हर दूसरे हफ्ते एक sequel announce करता है, तब उसकी सबसे unique franchise uncertainty में खड़ी है, and that feels strange है। We've got romance, we've got action, we've got patriotism. Lekin stylish international crime thriller, criminal mastermind, aisa anti-hero jiske liye aap secretly root karne lagte ho. There is none. Zero. Koi bhi nahi hai. Aur shayad isliye Dawn important hai. Kyunki jab Bollywood har dusre hafte ek sequel announce karta hai, tab us

0: बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा और शायद थोड़ा सा कूल भी, which is why I said it's the death of cool. So now it is up to Farhan Akhtar. वही डिसाइड कर सकते हैं if India gets another dawn, if the world gets another dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव. ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर वन, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर
1: नंबर वन.

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
2: Child and I think I'm doing a good job raising him. पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
3: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल? शाम शानदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिर्ची ईशा आ चुकी है आपके साथ, आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने। शुरुआत हो चुकी है हमारे शो की, जहाँ पे हम बातें करेंगे ढेरों सारे। रिसेंटली ना मैंने एक बुक रीड करना शुरू की है जिसका नाम है इकिगाई, और वो एक जापनी सीक्रेट है टू अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। एंड लिटरली स्पीकिंग कि मुझे उसमें जो भी बातें हैं वो ऑलरेडी पता थी कि किस तरीके से वी हैव टू लिव आवर लाइफ, हेल्दी लाइफ। लेकिन उस बुक के आने के बाद, पढ़ने के बाद, आई डोंट नो हाउ मैजिकल इज दिस बुक इज, मैंने उन चीज़ों को बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू दिस बुक, क्योंकि ये मेरे हाथ में है और मुझे ये इन्फ्लुएंस कर रही है, इनकरेज कर रही है एक हेल्दी लाइफ के लिए। बाकी बातों का सिलसिला जारी रहेगा मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ। आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ। जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है वो
3: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक दिन परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: अगर आपको भी ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, नए पार्क्स को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वेलकम, आप सही जगह आए हैं. आप सुन रहे हैं मिर्ची ईशा को और शाम शानदार में आपकी शाम को और शानदार करने आ चुकी हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी हिडन प्लेस जो अभी हाल ही में खुली है, दैट इज अ ब्यूटिफुल पार्क जो अल थुमामा में खुला है एंड इट इज अल नाफल पार्क, जहाँ पे आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिली के साथ, बच्चों के स्कूटर्स उठा के, साइकिल्स उठा के आप निकल जाइए अल थुमामा में, अल नाफल पार्क में, जो नया ही नया खुला है एंड इट इज फैमिली फ्रेंडली पार्क, जहाँ पे आपको मिलेगा आउटडोर एरियाज जहाँ पे फिटनेस भी है एंड वॉकिंग एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, जॉगिंग एरियाज है एंड उसके अलावा आपको शेडेड ग्रीन स्पेसेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ. उसके अलावा किड्स प्ले एरिया तो ऑब्वियसली हर पार्क में है कतर में, तो बस यहाँ पे भी तो हो. और आपने क्या करना है, बस अपने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उठा के जाना है, एंजॉय करना है, बाकी बस अपने आस पास को साफ भी रखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनको भी सिखाइए भी साफ रखना है, पार्क को गंद नहीं मचाना है. बाकी फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8.
0: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6. नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे.

0: फ्री फ्री, अरे ये सुनते ही ना वैसे ही कान ऐसे खड़े हो जाते ना भाई, फ्री में क्या है फ्री में। बोले तो आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग सा इवेंट। जी हाँ, मिर्ची ईशा आपके लिए इवेंट्स मजेदार ना लाए तो कौन लाएगा। तो आपको बता दूं, एक ऐसा ही इवेंट जो बिल्कुल फ्री है, यानी कि मिरयाल वाटर पार्क बीच, जो 1 जून से लेकर जून 30 तक टोटली फ्री है। एंड ये फ्री पब्लिक एक्सेस 6 PM to 11 PM है, टोटली फ्री है। हाँ, और यहाँ पे आपको मिलेगा भंडार परफॉर्मेंसेस का, चाहे वो स्पॉन्ज बॉब हो चाहे पॉ पेट्रोल हो, ये सारे क्रू आपको वहां मिलेंगे मिरयाल वाटर पार्क बीच में। अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड समर स्प्लैश, अरे ऑल जून आपका जो है ना, दैट विल बी एन अमेजिंग एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज आउट ऑफ इट, आई एम डैम श्योर। यहाँ पे हो रहे हैं बहुत सारे स्टेज शोज, मीटिंग चेज, स्काइज, स्पॉन्ज बॉब एंड पेट्रिक IRL, बहुत कुछ और भी। तो बस 6 बजे के बाद अपना टाइम फ्री रखिए और जाइए मिरयाल पार्क और एंजॉय करिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाले साथ।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Khat khat.
5: Kaun hai?
4: Dave.
5: Dave kaun?
4: The way you love me. I hai mar jawa.
5: Khat khat. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: आपने ये गाना तो सुना होगा, 40 डिग्री सीधी धूप पैंदी, बस हाँ जी वही धूप अभी भी पड़ रही है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस है आज में, और ये 42 डिग्रीज आपको फील करवाएगा। टोटली सनी है, ध्यान से निकलिएगा घर से बाहर, बहुत गर्मी है। मुझे लगता है 42 भी नहीं फील करवा रहा है, ये फील करवा देगी 50 डिग्री हो गए। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो बस कैरी करिए अपना पानी, सनस्क्रीन और अम्ब्रेला, और स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.8 सॉल्ट।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: Mr. Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La fiesta la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की। तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड। सर इतना गुस्सा मत होइए।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन, It's hot.

0: अगर आप भी हैं फुटबॉल लवर तो आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आई हूँ। वेलकम टू माय शो शाम शानदार, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल लवर्स की, जो मैच अगर देखना पसंद करते हैं और कतर टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। कतर वर्सेस साल्वाडोर होने वाला है 6 जून को बीएमओ स्टेडियम लॉस एंजल्स में, एंड कतर के टाइमिंग के अकॉर्डिंग 11 PM ये शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अलकास स्पोर्ट्स चैनल्स में। एंड ऑफकोर्स अगर आप कतर की टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं तो ये मैच देखना तो बनता है, तो देखिए और एंजॉय ये मेरे साथ शाम शानदार, only on 89.6 Mirchi 1 at 8.
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेमतलब बनी हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। इस जीवन में बेमतलब कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे आप अगर टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ नर्डल। यस। एंड अगर आप अल्फाबेट्स में देखें, आई और जे जब भी आप लिखते हैं, स्मॉल आई और जे, तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उस डॉट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ टाइटल। और एक और आपको बता दूं तो अगर आपने कॉफी पी होगी बहुत से कॉफी आउटलेट्स पे, तो वहां पे आपको एक कप दिया जाता है, उसको एक कार्डबोर्ड के कवर के साथ, ब्राउन कवर के साथ कवर किया जाता है, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ ज़ार्फ। ज़ार्फ, जी हाँ। ये एक स्ट्रेंज सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, बड़ी अजीबो गरीब थी। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स ऑल
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
1: उससे भी ज्यादा।
0: लॉटरी लग गई?
1: उससे भी बड़ा।
0: तो फिर बताओ।
1: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
2: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
3: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: बचपन में मम्मी बोला करती थी कि टाइम इज मनी, बट अब समझ में आता है कि टाइम इज मनी क्यों कहा जाता था। क्योंकि अगर आप टाइम पे हर चीज नहीं करोगे तो टाइम आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको कुछ लाइफ में हासिल नहीं करने देगा। तो भाई टाइम मैनेजमेंट करके रहना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ मुझे भी समझ में आ रहा है कि समय हो गया है आप लोगों से अलविदा कहने का। तो करती हूँ टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
1: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
0: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
1: मिर्ची वन Qatar.com पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
2: अबे कौन है?
3: उत्तपा।
2: उत्तपा कौन?
3: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe aap, ab bari hai to set the pop clock for the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, mujhe follow karo. Mera handle is @RJKanika. Hafte ke top 10 hottest pop gaane hain. Hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hai. Some special shout outs and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Adnan Sami ki composition, unhi ki awaaz, Mahima Bharadwaj ke lyrics. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
0: नंबर 10.

0: This song screams that Punjabi aa gaye hain. Oye, Diljit Dosanjh ki awaaz, unhi ki composition. Gaane ka naam hai Dealer. 11 hafton se Punjabi is countdown pe resident ban chuke hain. Pichle hafte se 3 position niche drop hoke Dealer was this week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट. सोचने वाली बात है, ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन, राइट? कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है. बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है.

एट आरजे करेगा और इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, मीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज दया द रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
3: हैं? एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
3: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
12: Number 7.

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanega. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanega. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se, wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट विच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

Mika ka gana called Something Something. If you are from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Mika Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subha Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 volt from Sultan. Mika Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनकी एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते ही आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन I challenge you कि ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. The biggest party voice of our generation, मीका की आवाज में, this is something something, a 2006 indie pop song playing right next for you on a cassette classic this week. बंदी का नाम है RJ करेका. Enjoy.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म. मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं है. मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे. दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग रिकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोते का गाना. गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: Restaurant partner Chaska Restaurant. Chinese, Mumbai ho ya North Indian ka craze. Budget mein chahiye tasty dish? To chaliye Chaska Restaurant. Jo hai Hasdan Oasis mein. Swaad bhi zabardast aur price bhi mast.
1: Mall partner Abu Sidra Mall. Shopping, dining and everything in between. Abu Sidra Mall has it all. Abu Sidra Mall for every day and every occasion.
2: Hygiene partner Hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner Sky Jewelry. Har pal ko banaye khas Sky Jewelry ke saath. Elegant designs, dazzling collections. Aur har budget ke liye perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry. Design for generations.
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.
8: Gaana Indie Top 10
9: Kanika ke saath on Mirchi.
10: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Aksar jab hum baithte hain music, movies ke baare mein baat karte hain, har generation ke kuch aise guards hote hain, moral guard bolte hain unko, jo ye baatein shuru kar dete hain ki yaar aaj ke music mein wo baat nahi hai. आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी। अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना और वो कंप्लेन करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना। मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक। मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग। आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है। इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशान सरकार। We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है। एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू। What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने फोक म्यूजिक को कि यार ये तो उस जमाने का म्यूजिक है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है। उन्होंने उससे ही आज की लैंग्वेज में बात करके दिखाई। गाना बहुत एनर्जेटिक है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली डांसेबल, ग्रूवेबल, लेकिन डांस के लिए नहीं बना है। एंड कोरस में एक ऐसी क्वालिटी है दैट एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप म्यूजिक म्यूजिक सो एक्साइटिंग. हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड उबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार. आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJ करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा, हमसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर। पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
5: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
6: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
5: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी
3: होता।
4: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
5: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
6: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
5: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला

0: कम चुपती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कट कट,
4: हू दैट?
3: भट्ट।
4: भट्ट? अरे भट्ट हूँ।
3: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
4: खट खट, हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1.
2: Mirchi,
5: it's hot.
6: Ghana Indie Top 10.
7: Kanika ke saath on Mirchi.

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोरे ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वॉज मिट्टा रोर का शीशा।

0: Mesh Reshamya is back with a song called Sharab this week on Gana number 5. Diljit Dosanjh and Sia ka Ranjha was on Gana number 4. Karan Aujla Ikki ka Boyfriend on Gana number 3. अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2.
1: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में.
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने. 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
2: Number 1.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है. कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना. लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान. और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है. क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन. एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का. और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में. हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20. एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं. दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर. एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट. लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस. शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से. ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है. सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा. बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन. कहीं जाना मत. आई विल बी बैक.
4: Number 20.

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है, और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं, एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कंप्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले, और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे, और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस, श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
1: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
1: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
1: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
1: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
1: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
1: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई, वो तेरा जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
1: साहब जी को तो गलत बात है, साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ
2: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछो भाई।
1: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
1: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
1: पकड़ ले
2: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

0: वेलकम टू द जंगल। और उस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये फिल्म कम लगती है और बॉलीवुड कॉमेडी एक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग ज्यादा। इतने लोग हैं इसमें कि अगर एक और एक्टर जुड़ गया ना तो अटेंडेंस रजिस्टर खोलना पड़ेगा। लेकिन मजाक एक तरफ, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे एक और ट्रेंड से रूबरू करवा दिया। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्म्स के सीक्वल्स नहीं बना रहा, बॉलीवुड यादों के सीक्वल्स बना रहा है। पहले फिल्म का सीक्वल आता था, लेकिन अब फिल्म के साथ उसमें जो गाने थे उनके भी सीक्वल आ रहे हैं। भूल भुलैया वापस आती है तो उसका टाइटल ट्रैक भी वापस आ जाता है।
1: तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you, baby।
0: डॉन वापस सो उसकी थीम वापस, धूम वापस तो उसकी भी थीम वापस, एंड देन यू गॉट है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें टाइटल ट्रैक भी है, चुनरी चुनरी भी है। पहले नोस्टैल्जिया साइड डिश हुआ करती थी, अब नोस्टैल्जिया मेन कोर्स बन चुकी है। शायद इसलिए जब कोई नया गाना अपनी खुद की पहचान बना लेता है तो वो और भी खास लगने लगता है, जैसे गाना नंबर 15 वंस अगेन बाय विशाल मिश्रा।
2: नंबर 15।

दीवानियत, एक ऐसा गाना जो किसी पुरानी याद को बोरो नहीं करता, अपनी याद बनाने की कोशिश करता है। और अब नंबर 14 पे एक गाना जो पहले इंटरनेट का था फिर बॉलीवुड का हो गया। दिस वन इज फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, हमने वही दिल लगाया, बाय द मंडल ब्रदर्स।

0: रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Pizza partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 5555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसेस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल। शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी। हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन June 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: आज इतने खुश क्यों हो? सैलरी बढ़ गई है क्या?
6: उससे भी ज्यादा।
5: लॉटरी लग गई?
6: उससे भी बड़ा।
5: तो फिर बताओ।
6: 8 जून से पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच का सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। ग्रोसरी से गैजेट्स तक धमाकेदार ऑफर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे कम दाम।
0: 8 से 13 जून तक एनिवर्सरी सेल का मजा लीजिए एट पेरिस हाइपरमार्केट अल वकरा ब्रांच। पेरिस हाइपरमार्केट फीड्स योर लाइफ।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
6: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
7: Number 13.

0: जाइए सजना बाय द ऑसम चिक जैस्मिन सैंडलर्स और धुरंधर मेरे लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। ये एल्बम सिर्फ हिट नहीं हुई, ये नए सिंगर्स को भी स्पॉटलाइट में लेके आई। जैस्मिन सैंडलर्स को ही आप देख लीजिए, काफी सालों से वो गाने गा रही हैं, यार ना मिले, इलीगल वेपन, लेकिन कभी कभी एक गाना ही काफी होता है पूरा परसेप्शन बदलने के लिए। और फिर बॉलीवुड का म्यूजिक बिजनेस मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक तरफ नई आवाजों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ आवाजें पता नहीं कहां गायब हो जाती हैं। कुछ दिन पहले मेरा फोन जो है वो शफल मोड पे था और अचानक ये गाना चल पड़ा।
1: हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बा खुदा तुझको है चाहता जान।
0: Do you remember the song? It was from Murder 2. और सिंगर थे हर्षित सक्सेना, एक ऐसे सिंगर जिनका नाम सुनते ही आज भी ये गाना मुझे याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद where did he go? चार्टबस्टर्स की लिस्ट में वो नाम फिर कभी वैसे नजर ही नहीं आया। And then there is a name जो मुझे याद आया, which is the most shocking, अंकित तिवारी, मेरा दोस्त, एक सिंगर कंपोजर जिसने बैक टू बैक दो ऐसे गाने दिए जो पूरी जनरेशन की प्लेलिस्ट को डिफाइन करते हैं।

यार सवाल ये नहीं है कि अंकित तिवारी कहाँ चले गए, सवाल ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाता है। कल जिस आवाज पर पूरा देश फिदा था, आज उसकी जगह कोई नई आवाज ले लेती है। लेकिन मेलेडी की एक खूबसूरत बात है, वो रिटायर नहीं होती, बस नए चेहरे ढूंढ लेती है। और इस वक्त उस नई आवाज का नाम है फहीम अब्दुल्ला। नंबर 12 पे इज इटर्नल हिट सैयारा का टाइटल ट्रैक। नंबर 12।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए। कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: खटखट
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11।

चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं, शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों? I'm sure आप पूछेंगे, लेकिन मुझे

0: इसलिए नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है। जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे वो लंबी ड्राइव, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है। दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। एंड हाउ शाहिद कैन स्टिल लुक सो कन्विंसिंग एज अ कॉलेज बॉय, इट टोटली बैफल्स मी, बट ही नेल्स इट। मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, बस इतना पता है मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा। एंड मे बी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ सॉन्ग कैन गेट। Maybe the song will go to number one, like this week on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds. And unko saath mil raha hai Sunidhi Chauhan ka. Do alag duniya, ek saath. This is Tujhko from Cocktail 2.
1: Number 10.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

नंबर 9 पे था वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा ए आर रहमान। एक और रिमाइंडर कि प्यार सिर्फ शोर नहीं मचाता, इट डजंट हैव टू बी लाउड, कभी कभी वो धीरे से दिल में जगह बना लेता है। और शायद इसलिए कुछ फिल्म्स वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। ये जवानी है दीवानी, उसकी रिलीज को अब 13 साल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लोग उसे एक फन समर एंटरटेनर समझ रहे थे, ग्लॉसी स्टार्स थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस, द धर्मा स्टाइल रोमांस। लेकिन आज समझ आता है कि फिल्म एक्चुअली थी किस बारे में, द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, द अर्ज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, और वो कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन एम्बिशन एंड बिलोंगिंग। अयान मुखर्जी ने उस जेनरेशन की कंफ्यूजन को बॉलीवुड स्केल पे कैप्चर कर लिया। और फिर आता है उस फिल्म का म्यूजिक।

0: ये सिर्फ ट्रैवल सॉन्ग नहीं रहा, ये गाने लोगों की मेमोरीज बन गए। लेकिन अगर उस पूरी एल्बम में एक थीम थी, एक स्पिरिट था, एक सोल था, तो वो था कबीरा। वो गाना जो आप सेलिब्रेशन में नहीं सुनते, आप उसे तब सुनते हो जब जिंदगी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए। फिल्म में उसके दो वर्जन थे, लेकिन माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज द वन दैट इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दिस इज द रीप्राइज वर्जन ऑफ कबीरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो मैं लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आ गए, वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियां आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

0: व्याह करवा दो जी। एंड ऑनेस्टली है जवानी तो इश्क होना है, थिएटर्स में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस ने फिल्म को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना अपनाया है। लेकिन इस हफ्ते एक और फिल्म ने मेरा ध्यान खींच लिया, कॉकटेल 2। इसका ट्रेलर आ गया ऑन यूट्यूब। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द फिल्म और मैंने भी सोचा यार कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ जरा देख लूं, जानू तो सही शाहिद, रश्मिका और कृति आखिर अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। ट्रेलर हिंदी में, फिल्म हिंदी में, गाने हिंदी में, लेकिन स्टेज पर हुई बातचीत पूरी अंग्रेजी में। और ये बात सिर्फ कॉकटेल 2 की नहीं है, आजकल किसी भी बड़ी फिल्म लॉन्च को देख लीजिए, कभी कभी लगता है फिल्म का प्रमोशन कम और एमबीए में वाइवा ज्यादा चल रहा है। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाली डिबेट नहीं है बॉस, वो बोरिंग है। ऑडियंस इंग्लिश समझती है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, चाहे कानपुर में बैठी हो, चाहे मुंबई में बैठी हो, चाहे इंदौर में बैठी हो। इशू भाषा का नहीं है, इशू कनेक्शन का है, क्योंकि सिनेमा तब बनता है जब आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनकी भाषा बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक भाषा में बात करता है और सपने दूसरी भाषा में बेचता है। ऑडियंस अब टाइटल्स पढ़ लेगी, एक्सेंट भी समझ लेगी, इंग्लिश भी समझ लेगी, बस एक चीज है जो ऑडियंस के साथ नहीं चलती, एंड दैट इज फेकनेस। हमें चाहिए कनेक्शन। लेकिन इस फिल्म के एक गाने का जबरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है। आई हैव बीन हियरिंग इट ऑन लूप, मेरे दिमाग से ये गाना नहीं निकला है। इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक, माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, 4 पोजीशंस ऊपर, सर्टिफाइड बैंगर बाय प्रीतंदा। क्रिटिक्स गए तेल लेने।
1: नंबर 6।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
5: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट नंबर 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन। और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्ज देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जो खरीदे नहीं बल्कि दिल से दिए जाते हैं।
2: इस साल कतर के बच्चों ने भी अपने एमिर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के लिए एक ऐसा ही खास तोहफा तैयार किया है, मिर्ची स्प्रेड द स्माइल के साथ, जहां हजारों नन्ही मुस्कानें एक साथ जुड़कर बन गई एक शानदार डिजिटल मोज़ेक।
1: मुस्कानों का एक ऐसा गुलदस्ता जो बन गया है प्यार का एक पैगाम और बर्थडे विश का एक खास अंदाज, क्योंकि ये आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के जन्मदिन पर दी गई हजारों विशेस का हिस्सा है।
2: मिर्ची वन कतर डॉट कॉम पर जाकर अभी खोजे अपने बच्चों की मुस्कान से भरी तस्वीर इस डिजिटल मोज़ेक में।
3: खट खट
4: अगर कर
3: हूँ, अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
4: खट खट हूँ दैट।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
6: Number 3.

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ? करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, वी गॉट रोमांस, वी गॉट एक्शन, वी गॉट पेट्रियोटिज्म, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेंटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। So now it is up to Farhan Akhtar. We decide kar sakte hain if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, ya phir maybe we have seen the last of him. Filhal 16 hafton se number 1 and still refusing to move. Ye hai Shararat from Durandar 1, Shashwat Sachdev ka banaya hua ye everlasting banger.
1: Number 1.

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और कसम से दोस्त, रोग अगर आपको कोई हो जाए ना, इश्क का रोग हो, जहनी कोई रोग हो, कुछ भी हो, लोग इतनी राय देने आ जाते हैं, अपना अपना नुस्खा बताने आ जाते हैं कि क्या कहा जाए। कतील शिफाई साहब का बड़ा एक सटीक शेर है, कहते हैं कि जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। वाह जी वाह, इतने सारे लोग आ जाते हैं जो कि अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं कि ये करके देख यार, इससे बेहतर हो जाएगा, वो करके देख यार, उससे बेहतर हो जाएगा। इन्हीं सब में इंसान और खराब हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाता कि यार क्या करके देखूं कि बेहतर हो जाऊं। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, स्वागत है आपका शो में। एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो।
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दी जाए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
3: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
3: पिटोगे,
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: ये पकड़ा
8: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त है आपको रूबरू कराने का
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: मिर्ची महफिल पर आज के हमारे शायर से, बिल्कुल जी। और आज जिन शायर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है फरत एहसास साहब। बिल्कुल बीबीसी के साथ एसोसिएटेड रहे, ऑल इंडिया रेडियो के साथ एसोसिएटेड रहे। 1950 में बहराइच में जन्मे फरत एहसास साहब, अभी तो दिल्ली में रहते हैं एंड इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोमिनेंट पोएट्स इस वक्त के। और उनका एक बड़ा ही बेहतरीन सा शेर है जो कि जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है कि कभी कभी साथ में रहने से बेहतर खुद खुश रहना जब आ जाता है, जब मुद्दा बन जाता है। फरत एहसास साहब लिखते हैं कि हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमियां, हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमियां कुछ अलग से और खुश होने की कोशिश आ गई। आए हाय हाय, ये जो अलग से और खुश होने की कोशिश होती है ना, यही न जाने कितनी रिलेशनशिप्स की लास्ट नेल इन द कॉफिन, आखिरी सांस होती है। हम बहुत खुश थे मगर एक दिन हमारे दरमियां कुछ अलग से और खुश होने की कोशिश आ गई। ये अलग से और खुश होने की कोशिश साथ ही की बनी रहे, मेरी तो आपसे यही उम्मीद रहेगी। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी है आपके साथ और कभी कभी ना बार इज वेरी लो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जिंदगी में किसी को खुश करने के लिए किसी का हाल पूछना भर, इतना सा छोटा सा काम करना भर काफी होता है कई बार। फहमी बदायूनी साहब का शेर है, कहते हैं कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा। वाजीवा, लिटरली अगर आप परेशान हो ना और आपके जहन में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है जो आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, अगर कोई आके बस कंधे पे हाथ रख के पूछ ले कि दोस्त क्या दिक्कत है, क्या हो गया, और अगर वो इंसान आके पूछ ले जिसका दर्द हो, तब तो क्या ही बात है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
2: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
3: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: अकबर।
5: अकबर हू?
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
5: खट खट, हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आपको आज का पहला ताशी अनप्लग्ड। चलिए आपको मैं सुनाऊं जावेद साहब का लिखा हुआ और हरिहरन साहब का गाया हुआ। हाँ जी ओए होए होए होए हरिहरन साहब हैं, साधना सरगम जी हैं इसमें, और क्या तो यार ये गाना है। इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट

इस नगमे के बाद सवाल ये भी बनता है कि दोस्त जावेद अख्तर साहब का लिखा आपका सबसे पसंदीदा कलाम, आपका सबसे पसंदीदा नगमा कौन सा है? लिख भेजे मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क का रास्ता बड़ा आसान होता है, मगर कई बार जमाने की चाल चलते हुए लोग भटक जाते हैं और आसान चीजों को मुश्किल कर बैठते हैं। बाकी सिद्दीकी साहब का बड़ा बेहतरीन शेर है कि तुम जमाने की राह से आए, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। आए हाय, उधर मुस्तफा जैदी साहब का पर्सपेक्टिव इससे बिल्कुल उल्टा है। कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो दोस्त, जितने लोग उतने पर्सपेक्टिव। इश्क की डगर किसी के लिए मुश्किल है और किसी के लिए आसान। आपके लिए कैसी रही? बात करें मुझसे मेरे इंस्टा और FB मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट।

0: हेलो
1: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
0: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
1: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
0: हेलो,
1: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
0: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
1: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
0: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
1: हैं, मोबाइल पे?
0: और क्या,
1: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
0: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
1: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
0: आपको बताना चाहिए था ना
1: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
0: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
1: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
0: आपका दिमाग खराब?
1: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
0: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
1: नवेद लिखिए, नवेद
0: आ रही है।
2: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आप कताशी सुनाए आज का किस्सा जो आ रहा है दाग दहलवी साहब की जानिब से। और किस्सा बड़ा छोटा सा है, बड़ा क्रिस्प सा है। एक बार दाग दहलवी अजमेर गए, जब वहां से रुखसत होने लगे, चलने लगे, तो उनके एक शागिर्द स्टूडेंट नवाब अब्दुल्ला खां मतलब ने कहा, उस्ताद आप जा रहे हैं, जाते हुए अपनी कोई निशानी तो देते जाइए। ये सुनकर दाग ने बिला तअम्मुल बिना रुके कहा, दाग क्या कम है, निशानी का यही याद रहे। क्या बात है, मतलब नाम उनका दाग है और ऐसे उन्होंने खेल लिया इस बात पे। और बड़े शायरों की यही बात होती है कि उनकी जबान से जो भी निकलता है कई बार इतने लय में और इतना सधा हुआ निकलता है कि शायरी सा ही लगता है। आप बड़े शायरों को बोलते हुए भी सुने तो आप घंटों सुन सकते हैं उनको। बहरहाल मैं घंटों नहीं बोलूंगा, अगली गजल आपके लिए पेशे खिदमत है सिर्फ मिर्ची महफिल पर। ऑफ कोर्स ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कभी कभी ब्रेकअप के बाद जब कोई इश्क खत्म हो जाता है, उसके बावजूद दिल में एक उम्मीद जिंदा रहती है। बहुत लंबे वक्फे तक, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक एक उम्मीद जिंदा रहती है कि शायद वो पलट के वापस आ जाए। लेकिन फिर कुछ होता है जिससे वो उम्मीद भी चली जाती है। परवीन शाकिर साहिबा का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कहती हैं कि अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। हाय हाय, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। ये झांकना झोंकना बहुत हुआ, मैं तो कहूंगा अपनी जिंदगी की कमान को अपने हाथ में ले और सुनते रहे अपने ताशी को। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Jassi.
6: Jassi? Kaun si wali Jassi?
5: Jassi who has come, auntie ji?
6: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: अकेलापन जख्म भी है और दवा भी।
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।

इसी वजह से कई बार रात को नींद भी नहीं आती। ऐसा ही हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने डायरी में लिखी अपने बड़े ही पसंदीदा शायर नाहिद अख्तर बलूच साहब की यह गजल कि नींद जरा सी जब भी आने लगती है, नींद जरा सी जब भी आने लगती है, याद तुम्हारी शोर मचाने लगती है। साथ मिलाते हैं आवाज परिंदे भी, हवा मुझे जब गीत सुनाने लगती है। और देख के खिड़की से बारिश को पागल लड़की, आज भी दो कप चाय बनाने लगती है। हम सब शायद किसी न किसी की हाथ की चाय पीने के लिए तरस रहे हैं और आज यहां आके मिले हैं। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कभी कभी इंटरनेट पे आप कुछ पढ़ लेते हो जो कि आपके जहन में एकदम उतर जाता है, एकदम तारी हो जाता है। और ये दो लाइनें मैं ऐसी स्क्रॉल कर रहा था, ऑफ कोर्स आप बिना मकसद के, डूम स्क्रॉल नाम ही है उसका, है ना, आप ऐसी बिना मकसद के स्क्रॉल कर रहे होते हो, और इन दोनों लाइनों पे मेरी नजर पड़ी और मैंने बोला आय हाय हाय कितनी ऐसी बात लिख दी है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ वाली टाइप्स की बात लिख दी है। कहते हैं कि मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, एनी हाउ मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते तो कातिल हो जाओ। आय हाय हाय हाय हाय, मतलब जो लेवल ऑफ डेस्पिरेशन है ना प्यार का, कि भाई साहब किसी तरीके से तो, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तो बात है यार, कुछ तो बात है। मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते तो कातिल हो जाओ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। और अगर आपकी भी ऐसी कोई लाइन है जो आपने पढ़ी और आपके जहन में उतर गई, लिख के भेजे मुझे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हम क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
4: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा था बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ लेती,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ये पगला।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपका ताशी आपको मिलवाए आज के हमारे लव्स से आपको मुखातिब कराए आज के हमारे लव्स से जो कि है ऐब। ऐब का मतलब बुराइयां, चिंक्स इन योर आर्मर है ना। और मीर तकी मीर का एक बड़ा सटीक शेर है कि किस तरीके से नकल करने के लिए भी अकल चाहिए जो बात करी जाती है ना, वैसे ही ऐब करने के लिए भी सलीका जरूरी होता है। कोई आदमी होगा, आपने जिंदगी में देखा होगा ऐसे लोगों को भी, अच्छा आदमी नहीं होगा, मतलब सारे गलत काम करता होगा लेकिन ऐसे स्टाइल से करता होगा ना कि उसको कोई कुछ बोल नहीं पाता होगा। मीर तकी मीर साहब का यही शेर है, कहते हैं कि शर्त सलीका है हर एक उम्र में, शर्त सलीका है हर एक उम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है, मतलब इतना क्लोज टू रियलिटी वाला शेर है ना, ये लाइफ लेसन है एक्चुअली ये, कि दुनिया को ना बुराइयां उतनी नापसंद नहीं होती जितना बुराई भी अगर आप एक स्टाइल से करते हैं, अगर आप आपके अंदर जो ऐब भी हैं अगर वो एक स्टाइल के हैं तो दुनिया शायद आपको ये बोले कि अरे चलो कोई बात नहीं, इसको करने दो, इतना बुरा नहीं है। शर्त सलीका है हर एक उम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए दोस्त, याद रखिएगा। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट वेरी

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड, अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और दोस्त कसम से ऐसा लगता है कि जितना सब सिखाया गया सब फिजूल था। स्कूल में अगर ये सिखा देते कि इस बाहरी दुनिया में किस तरीके से जीना है, भाई साहब कॉरपोरेट में क्या करना है, बैंकों में क्या करना है, अगर ये सब चीजें सिखा देते तो हमारा कितना फायदा होता है कि नहीं। हस्तीमल हस्ती साहब का एक बड़ा सही शेर मिला मुझे, कहते हैं कि कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। अब जब इतना डिस्टेंस होगा बिटवीन व्हाट वी वर टॉट और क्या प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, तो इंसान को कुछ वक्त तो लगेगा ना अपने पैरों पे खड़ा होने में। तभी तो कहते हैं स्कूल कॉलेज की दुनिया से बाहर आओ और तब पता चलेगा कि असली दुनिया क्या है। कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। तभी किताबों वाले सबकों से निकले, जमाने वाले सबकों पे आए। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bordal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: खट खट.
6: कौन है?
5: अज्जू.
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
6: खट खट. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और अब है मेरा सबसे पसंदीदा वक्त,
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पे वक्त है कि ताशी नजर करे आपको आज का ताशी अनप्लग्ड। और ये जो गजल है, ये कतील शिफाई साहब की गजल है, इसको मेहंदी हसन साहब ने कंपोज किया, उन्होंने ही गाया। और एक्चुअली इसका जो शेर है ना, इसका जो पहला मतला है, वो मुझे बड़ा पसंद है, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। और वो करीब इसलिए है मेरे, क्योंकि जो इमेजरी है, जैसे जुल्फ जो होती है, जुल्फ को ना जुल्फ लहराई और शाम हो गई है ना, जैसे गुंचा में एक लाइन है कि सुबह को तेरी जुल्फ ने फिर शाम कर दिया। तो जुल्फों को हमेशा रात के साथ इक्वेट किया गया है, और यहां पे जुल्फों में जो फूल सजा है उसको अंधेरों में जला हुआ दिया कह दिया गया है, जो इमेजरी मुझे इतनी खूबसूरत लगी। चले बिना ज्यादा वक्त जाया करे, पेश है आपके लिए

और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।